नमस्कार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की एक तारीख, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:40 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी

0: हामी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदन वार विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: वंदन वार

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद को जानना ही इस जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है और यही ज्ञान सारी चिंताओं का एकमात्र समाधान है। और अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र झरोखा। आइए अब आपको बता दें झरोखा में कौन कौन से कार्यक्रम आप इस फ्रीक्वेंसी पर आज सुन सकते हैं।

सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम। 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का, और 7:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। देश और दुनिया का ताजा हाल आप जानेंगे 8 बजे समाचार प्रभात में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर पेश किया जाएगा त्रिवेणी कार्यक्रम। 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम चित्रलोक का। नौ बजकर 30 मिनट पर आज का अखबार कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 10 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचार का। 10:05 पर कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ पेश किया जाएगा, जिसमें आज हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारा विषय है नीम हकीम खतराए जान। और 11 बजे आप सुनेंगे गाने सुहाने। 11:30 का समय रहेगा कार्यक्रम शेरो नगमा का।

दोपहर 12 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। 12:05 का समय रहेगा कार्यक्रम यादों की महफिल का। 1:05 पर आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुन सकते हैं। 1:10 का समय रहेगा प्रादेशिक पंजाबी समाचार का। एक बजकर 15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत सुरीला सफर। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:15 पर हिंदी समाचार पेश किए जाएंगे। 2:30 का समय रहेगा सदाबहार नगमे का। और 3 बजे आप सुनेंगे

कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 बजे आज कार्यक्रम पिटारा में आप सुनेंगे सेहत नामा। 5 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचार का। 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 5:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शाम 6 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचार का। 6:05 पर गैर फिल्मी संगीत आप सुन सकते हैं। 6:10 का समय रहेगा प्रादेशिक हिंदी समाचार का। 6:20 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक पंजाबी समाचार। और 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार समीक्षा। शाम 6:35 पर पंजाबी गीतों का आप आनंद उठा सकते हैं। 7 बजे का समय रहेगा आज जयमाला कार्यक्रम का। 7:45 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। 7:47 पर पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। रात 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हवा महल। 8:45 पर समाचार संध्या पेश किया जाएगा। 9 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपके लिए का। और 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आज के फनकार। 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार पेश किए जाएंगे। और 10:32 का समय रहेगा सुर सांझ कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये तो हैं वो तमाम कार्यक्रम जो आज आप FM 107.2 MHz पर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए, प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आई। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संसार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में और संगीतकार जयदेव जी के कहने पर शास्त्रीय संगीत की ओर फिर मुड़े
2: जी।
1: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं
2: जी,
1: उनमें से कौन से मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए और कम आर्टिस्टों में गिने चुने

0: जोक्स आपका जिक्र कर चुके हैं, जगाजन राव जोशी जी का कर चुके हैं, डी के दातार और एन राजम जी और शिशिर कणादर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी, इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में एन राजम जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था और उनकी टेक्निक में पूरा साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूज़िक की जितनी खूबियाँ हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक उन्होंने सीखा, और बाद में और एक महापुरुष की शिष्या हुई वो, जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी दादरा गाते थे, उनके साथ मैंने भी बजाया महादेव मिश्रा साहब के पास। मैंने दो तीन लोगों की संगत की जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी, गजानन राव जोशी जी के साथ भी मैंने बजाया इंदौर में, एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के साथ। तो मेरा ये कहना है कि कम बैक टू बनारस, तो बनारस के संगीत को एन राजम जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया और ग्रहण करके ठुमरी दादरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया।
1: एन राजम जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में पहुंचे थे
0: जी।
1: तो कैसे थे वो दिन वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करती थी?
0: बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो
1: जी। जी,
0: एन राजम जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी,
1: जी
0: कई सारे, एम आर गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजम जी उन दिनों में, मुझे वायलिन तो उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं।
1: हाँ।
0: तो वो आती थी और मैं हर एक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहा है। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बड़ी दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब उनके घर में तो उनके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब,
1: हाँ,
0: वो भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, और अभी इनकी बेटियां और नातिन वगैरह सब वायलिनिस्ट
1: बजाते
0: हैं। बजाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं राजम जी की, और इनका वायलिन वादन श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी। हम विदुषी एन राजम जी का बजाया राग यमन की एक झलक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: अच्छी बात है।

0: विदुषी एन राजम का बजाया राग यमन की ये झलक आपने सुनी श्रोताओं। पंडित जी लगे हाथों राग यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह आरोह के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए राग यमन पहला राग है जो स्टूडेंट्स भी सीखते हैं
0: जी,
1: और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई था नहीं पाई उन्होंने, और स्टूडेंट्स को भी हम लोग शुरुआत
0: राग जो राग सिखाया जाए
1: राग से सिखाते हैं
0: जी।
1: तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा मा तीव्र लगता है, और पाधा निसा ये सब शुद्ध स्वर हैं। और वादी संवादी इसके जो हैं गंधार और निषाद हैं, ये दो सुर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा बजा के इसके आरोह या इसका एक स्वरूप कोशिश करता हूँ, ठीक है।

0: हम लोग केवल आरोह अवरोह से राग का बहुत स्केलेटन मालूम पड़ता है
1: जी,
0: स्केलेटन में और एक शक्ल में पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं
1: जी।
0: हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग एमन की शक्ल है।

0: इस राग की शक्ल बनती है। तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज्यादा आप इंतजार मत कराइए।
1: जी जी। और इस शक्ल को और थोड़ा साफ दिखाई दे इसके लिए।
0: देखिए थोड़ा सा बजा के बताता हूँ।
1: जी हाँ।

0: वाह पंडित जी, इस राग पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: कौन सा?
0: ले गए जी मोरा सावन।
1: अरे बहुत अच्छा गीत है
0: जी, लता जी की आवाज है
1: बिल्कुल।
0: और ये राजा मेहदी अली खां का लिखा गाना है, संगीतकार इसके हैं मदन मोहन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं।

0: राग यमन पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, लता जी की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जी।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है शंकर जयकिशन के संगीत से। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम हलाकू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी ये गीत आपने सुना लाला रुख इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कैफी आज़मी का लिखा गीत था और खयाम का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अदल ए जहांगीर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। कमर जलालाबादी का लिखा गीत था, हुस्न लाल भगत का संगीत। श्रोताओं, अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में एक बार फिर से स्वागत है। इस अंतराल के पहले आपने गीत सुना अदले जहांगीर फिल्म से, हुस्नलाल भगतराम के संगीत से सजा ये गीत था। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

0: रानी रूपमती इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे थे भरत व्यास ने और एसएन त्रिपाठी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का गीत शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना। भरत व्यास ने इस गीत की रचना की थी एस एन त्रिपाठी की बनाई धुन पर।

ये आवाज थी गीता दत्त की फिल्म फैशन से। ये गीत था भरत व्यास रचनाकार और गीतकार, गीतकार भरत व्यास और संगीतकार हेमंत कुमार थे।

0: भाभी फिल्म से ये गीत था। आशा भोसले ने आवाज़ इस गीत को दी। तन्वी नकवी की रचना थी और तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

हम बोल रहे हैं विविध भारती से, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: लीजिए श्रोताओं, लेकर हाजिर है हम कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। आइए आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। मस्ताना फिल्म का गीत है, रचनाकार आनंद बख्शी है, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।
1: हे रे

ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अब आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा ये गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है। फिल्म का नाम है गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें।
6: जिसके सब

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: सच्चाई फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफीक की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सावन भादो फिल्म के इस गीत को, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने और सोनिक ओमी का संगीत है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने इस गीत को गाया है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम जोली इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में धरती फिल्म का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर।

0: धरती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की

0: की क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता

0: गीता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला, वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुलनोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत

0: टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटखदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

0: तू बड़ा मेहरबान, आज तुझे तो भी दावत खिलाएंगे हम।
1: जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिर दर्द या दूसरे तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल

0: दवा, छाने की दवा, चक्रम की दवा,
1: धड़कन की दवा, धड़कन की दवा, तड़पन की दवा, और पेट में बंद पवन की दवा,
0: झटके की दवा, झटके की दवा, भटके की दवा, रास्ते के बीच झटके की दवा,
1: चक्कर की दवा, चक्कर की दवा, शक्कर की दवा, दिल से दिल की टक्कर की दवा,
0: होमवार बना रगड़ा,
1: मिट जाए झगड़ा,
0: होमवार बना रगड़ा,
1: मिट जाए झगड़ा,
0: धनक धनक धन दबड़ा, ओम धनक धनक धन दबड़ा, ओम धनक धनक धन
2: दबड़ा, मेरा पेट बगड़ा,
3: अरे मेरा गुरु रखड़ा,
0: सारी दुनिया है बीमार दवा करो,
1: अरे भाई सारी दुनिया है बीमार दवा करो,
0: भागो भागो हे नरनार, धांधल हो रही धुआंधार,
1: तुमको मौत रही ललकार, कलियां हो गई बदबूदार,
0: है घर घर में, है घर घर में,

0: के पंडा आए आयुर्वेद के पंडा
1: आए आयुर्वेद के पंडा लेके दवा का डंडा है। बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा।
0: अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंदा, और आसमान पर उड़े हमारे मतलब ध्वज का झंडा
1: है। धरती माता
0: धरती माता।

0: ये वो बहन नहीं है जिसकी जगत उड़ावे हाँसी और बचपन ही में निकल पड़े थे देकर सबको फांसी। ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे होके ये सन्यासी।
1: अरे ऊँट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे ऊँट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैजा, क्या है तुम्हारी खांसी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जम राजा को फांसी।
0: हो बोलो बोलो गुरु की जय जयकार, दवा करो। सारी दुनिया है बीमार, दवा करो।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं

0: भावनाओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

रानी जी, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम चित्रलोक, और आपको सुनवाते हैं सबसे पहले एक देशभक्ति गीत। साथ ही ये गीत जिन पर फिल्माया गया है, आज है उनका जन्मदिन। जी हाँ, अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के ऐसे महान अभिनेता थे जिनकी दमदार आवाज और शानदार अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। जन्म दिवस पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, अभिनय की दुनिया के थे वो अनमोल सितारे, हर किरदार में भर देते थे भावों के उजियारे, आज भी गूंजती है उनकी आवाज दिलों में कहीं। अमरीश पुरी जी, आप सदा रहेंगे यादों में हमारे, इस तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

0: ये गीत हमने लिया था फिल्म परदेश से। हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति आदित्य नारायण शंकर महादेवन और साथियों के स्वरों में, आनंद बख्शी के बोल नदीम श्रवण का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, आज सुबह और रात को 9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता अमरीश पुरी पर, सुनना नहीं भूलिएगा। और अब वक्त है इस कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाते हैं हल्का याग्निक और उदित नारायण का गाया ये गीत। सभी के बोल हैं, तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम राजा।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आजा नचले इस फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में, पीयूष मिश्रा इसके गीतकार हैं और सलीम सुलेमान का संगीत है।
4: इस

0: मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं देव नेगी और पायल देव की आवाजों में वायु का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत, लकी अली रम्या की आवाजों में, इब्राहिम अश्क की रचना है, राजेश रोशन का संगीत।

ये गीत था जानम समझा करो। इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में मजरूह के बोल थे। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चुचुलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना, इस फिल्म का गीत, जावेद अख्तर की बोल, शंकर एहसान लोई का संगीत।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। नमस्कार।

0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: और श्रोताओं, FM 107.2 MHz पर वक्त है कार्यक्रम आज का अखबार का।
1: आज का अखबार।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम आज का अखबार में मैं हूं आपके साथ रतीश कुमार। दोस्तों, कहते हैं धरती की सांस है ये जंगल, जीवन का आधार है ये जंगल, हरियाली की छांव में छिपे आने वाले कल के सुंदर संबल। आज है 22 जून और आज हम मनाते हैं विश्व वर्षा वन दिवस। ये दिन हमें उन अमूल्य वर्षा वनों को समझाने और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है, जो हमारे धरती के सबसे बड़े प्राकृतिक खजानों में से एक है। दोस्तों, सोचिए, यदि हमारी धरती एक शरीर है तो वर्षा वन उसके फेफड़े हैं। ये विशाल वन न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि जलवायु, मौसम को संतुलित बनाए रखने, वर्षा चक्र को बनाए रखने और लाखों जीव जंतुओं को आश्रय देने का कार्य करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इन वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका असर मौसम में बदलाव के रूप में हम देख सकते हैं। तो अगर हम प्रकृति को फिर से सहेजना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाकर इस दिशा में योगदान दे सकते हैं। पेड़ लगाना, कागज का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाना और प्रकृति के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना, बड़ा बदलाव इससे हम ला सकते हैं। आज विश्व वर्षावन दिवस पर हम संकल्प लें कि हम प्रकृति के इस अनमोल उपहार की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा, स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण देने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे।

भारतीय नौसेना में आईएएनएस अग्रय, आईएएनएस दूनागिरी और आईएएनएस संशोधक को सेवा में शामिल किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। भारतीय यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर के अंत तक हो जाएगा साइन और फरवरी मार्च 2027 तक हो सकता है लागू। भारत ने एफआईएच हॉकी वेमेन्स नेशंस कप 2025-26 का खिताब न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपने नाम किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान से बातचीत करने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। भारत 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 25-26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश के 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर कड़े इंतजामों के बीच हुई संपन्न। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए लगाया जुर्माना। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में 27 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। आंध्र प्रदेश, बिहार, केरलम, कर्नाटक, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर जीती त्रिकोणीय श्रृंखला। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में बनाए 94 रन। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही।

कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं। आइए अब आपको क्षेत्रीय समाचारों से रूबरू करवा दें। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने किया ऐलान, मावातियां सत्कार योजना के तहत 1 जुलाई को राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पंजाब में येलो अलर्ट किया जारी। इस दौरान पंजाब में कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश की संभावना। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जमीन के लेनदेन और कॉलोनियों के विकास को लेकर नियमों को किया कड़ा। बिना मंजूरी जमीन को अदला बदली कर कॉलोनी काटने पर लगेगी रोक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस के आधुनिकीकरण की समीक्षा बैठक ली। कहा, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी अस्पतालों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल। हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री होने के बाद अब ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया साइट पर सक्रिय हो जाएगी, खुद होगा इंतकाल। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम की तैयारियां पूरी। 23 जून से बिना रुके कटेगा टोल। हरियाणा में पुराने बिजली बिलों पर 15 दिनों में अंतिम बकाया होगा तय, नहीं चलेगी मनमानी, लोकपाल ने लापरवाही पर दी कार्रवाई की चेतावनी। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश होने के आसार जताए। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों को भाषा शिक्षक अथवा टीजीटी हिंदी के पद पर दी गई पदोन्नति पर लगाई रोक। क्षेत्रीय समाचारों में फिलहाल बस इतना ही।

चंडीगढ़ में जल्द ही स्ट्रीट वेंडर्स की वास्तविक स्थिति जानने के लिए करवाया जा सकता है सर्वे। नॉर्थ जोन अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा आज। ये प्रतियोगिता 24 जून से 30 जून तक चंडीगढ़ ट्राई सिटी, डेराबस्सी और पंचकुला के विभिन्न मैदानों में खेली जाएगी।

फास्ट फाइव नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए चंडीगढ़ की पुरुष और महिला वर्ग की टीमें पुडुचेरी हुई रवाना। और मौसम विभाग ने 21 जून से 24 जून तक चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। स्थानीय सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही।

और मौसम विभाग ने 21 जून से 24 जून तक चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। स्थानीय सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही।

0: 2.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेतिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार

0: इस गीत के साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: आज का अखबार। FM 107

0: been some up to her.
1: FM 107.2 MHz पर आप हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र के साथ, लेकर हाजिर है आपके लिए कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी, हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो चंडीगढ़।

0: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में आज मैं हूं आपके साथ रतीश कुमार। दोस्तों, कई बार हम शरीर में आई बीमारी के लिए अधूरी जानकारी या बिना किसी सही योग्यता के इलाज में जुट जाते हैं और मुसीबत को और अधिक बढ़ा लेते हैं। आज के समय में ये बात सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर उस जगह लागू होती है जहां लोग बिना पूरी समझ के किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सही योग्यता और सही ज्ञान को जानें। और इसीलिए किसी ने खूब कहा है, नीम हकीम खतराए जान। और आज इस कार्यक्रम में हमारा विषय भी यही है कि नीम हकीम खतराए जान। कई बार जो लोग बिना कुछ जाने आंख बंद करके सलाहों को मान लेते हैं और अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, ऐसे में क्या किया जा सकता है? आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ शहर का एसटीडी कोड है 0172। और हमारे कॉलर कॉल करना शुरू हो चुके हैं। आइए करते हैं उनसे बात और जानते हैं क्या है उनके विचार इस विषय में। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद आपका।
0: जी बताइए, आज का विषय नीम हकीम खतराए जान, क्या कहना चाहेंगे?
1: जी जी जी जी, तो मैं इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो सबसे बड़ी बात है किसी का हमें सलाह नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपको सलाह लेनी तो डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे कुछ पड़ोसी आते हैं, बोलते हैं कि आप ये चीज करो, ये चीज करो, इससे आपको फायदा जाएगा। लेकिन उन्हें एक तो सबसे बड़ी बात है, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। और क्या बोलते, और मालूम होता हो तो पुराने जमाने में कि इससे फायदा होगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता, तो हम उन पर जो है आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, तो फिर हम अपनी बीमारी को आगे बढ़ाने के बढ़ा लेते हैं। तो
0: बिल्कुल राकेश जी, और कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे जो इलाज हैं वो हर एक की बॉडी जो है वो अलग अलग किस्म की होती है। जरूरी नहीं है कि जो किसी को फायदा मिला किसी इलाज से वही इलाज दूसरे के लिए भी सही हो, है ना?
1: जी जी, तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई छोटी मोटी समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब तो देखो, अब तो भारत सरकार ने 104 हेल्पलाइन शुरू किया, तो हम घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि इस चीज से क्या हो सकता है। तो हमें डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे क्या बोलते हमारा नुकसान हो जाए।
0: बिल्कुल, कई बार सस्ती सलाह जो है वो नुकसानदायक भी होती है।
1: जी जी जी
0: जी, राकेश जी आपने अपने विचार साझा किए, कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, लोगों की सस्ती सलाह पर ना जाएं, बल्कि अपना दिमाग लगाएं, विशेषज्ञों की सलाह लें। कोई भी दिक्कत हो जीवन में, कोई भी परेशानी हो, तो हमेशा सही सलाह का अनुकरण करें, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं नीम हकीम खतराए जान विषय पर। जानते हैं क्या है विचार हमारे अगले कॉलर के। हेलो,
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
3: रितेश कुमार जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
2: नमस्कार,
3: मैं सेक्टर 42 चंडीगढ़ से सतीश कुमार बोल रहा जी।
2: सतीश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
3: सस्ते और टाइम बचाने के चक्कर में
2: जी
3: हम अपने आप को जोखिम में डाल लेते हैं।
2: बिल्कुल,
3: नजदीकी को छोटी मोटी जोड़ा छाप डॉक्टर बैठा है उसके पास चले जाते हैं, जिसकी ना क्वालिफिकेशन है, वो थोड़ी सी दवाइयां दे देते हैं, मिला के नींद की गोली दे देगा, कुछ दे देगा। हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए जी।
2: बिल्कुल,
3: हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसने MBBS की हो बकायदा। नहीं तो डिस्पेंसरी में जाए जी, मुफ्त इलाज होता है, डिस्पेंसर में क्वालिफाइड डॉक्टर बैठते हैं, सिविल हॉस्पिटल।
2: बिल्कुल, सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं।

0: बहुत सुविधा दे रखी है, मुफ्त देते हैं जी
1: जी।
0: अपना कोई इतना राशन नहीं होता आजकल जी, हम सोचते भी राश होगा वो होगा, दो चार मिनट में नंबर आ जाता है जी, ऐसी कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल सही सलाह जो है वो सही जगह आपको लेकर जाएगी,
0: नाले क्वालिफाइड डॉक्टर देखेगा भी आपको कितने एमजी की गोली चाहिए
1: जी। बिल्कुल सही,
0: हाफ एमजी चाहिए, वन एमजी चाहिए, सपोज सांस की प्रॉब्लम होगी किसी को, डॉक्टर सिम्टम देखेगा, आपके लक्षण देखेगा, इसको कितनी की मात्रा में दवाई चाहिए।
1: सतीश जी कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कोई इस तरह की सलाह मानी हो जिससे कोई दिक्कत हुई हो आपको जिंदगी में?
0: जी जी, मेरे को थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम था
1: जी,
0: मैं अपने आप केमिस्ट से गोली ले ली जी।
1: ओके,
0: ज्यादा एमजी की ले ली, उसने मेरे को 4 एमजी की दे दी जी।
1: जी
0: मैंने वो चाहिए थी हाफ एमजी, अपना बहुत ज्यादा डोज ओवरडोज हो जाता है
1: जी, आप जी।
0: बाकी जो मालिशे वाले पड़े हैं जो दर्द कहते हैं हमारा ठीक कर देंगे, या थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो गया, वो ऊपर हड्डियां तोड़ देते हैं जी आदमी की मालिश कर करके।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए जी,
1: बेटर है एक्सरे करवाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल सही,
0: एक्सरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता
1: जी,
0: अपना एक्सरे कराना चाहिए जी।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत सुविधा है, सरकार ने बहुत सुविधा दे रखी है जी।
1: सही कहा आपने सतीश जी, बहुत अच्छे अपने विचार साझा किया और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर जी।
1: दोस्तों आप भी अगर अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं, नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। कोशिश करें कि अपना इलाज वहीं से कराएं जहां पर अनुभव और ज्ञान हो, अंदाजे पर बिल्कुल ना जाएं।

0: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं नीम हकीम खतरा ए जान विषय पर। दोस्तों, इलाज वही सही होता है जो ज्ञान और अनुभव पर आधारित हो, अंदाजे पर नहीं। बीमारी से लड़ना है तो सही डॉक्टर या सही सलाहकार चुनना बहुत जरूरी है। और क्या कह रहे हैं हमारे अगले कॉलर इस विषय पर, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: नमस्कार सर, मेरा नाम सतपाल सिंह है।
0: जी सतपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैं नालागढ़ से बात कर रहा हूँ
0: जी। आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: हाँ जी, आपका आज का विषय है नीम हकीम खतरा जान।
0: बिल्कुल,
1: यही है ना सर?
0: जी जी।
1: हाँ सर, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सुनाना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल।
1: एक बार क्या हुआ, मैं बाबा रामदेव जी का प्रोग्राम देख रहा था।
0: एक्चुअली
1: मुझे कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी
0: जी,
1: तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने टीवी पर बताया कि अपना कोसा पानी जो है करो
0: जी,
1: और उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के जितना पानी पी सकते हो पी लो
0: जी।
1: तो पानी पीते रहो पीते रहो पीते रहो, जो भी है उससे आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो अपना वो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है कि मेरी वाइफ ने हालांकि मुझे मना भी किया, बोले इतना ज्यादा पानी मत पियो, लेकिन मैं पानी पीता रहा पीता रहा पीता रहा और पता नहीं शायद 5-6-7-8-10 लीटर लगातार पी गया
0: जी, कुछ ज्यादा ही पी गया।
1: क्या हुआ कि मेरा कॉन्स्टिपेशन तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरा पूरा शरीर जो है फूल गया, सूजन आ गई। मेरी बाजू भी मोटे मोटे हो गए पूरा, मतलब मेरे को चक्कर आने लगे और मैं लेट गया। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास मैं गया शाम को
0: जी,
1: ये अप्रोक्सीमेटली 7-8 साल पुरानी बात है
0: जी।
1: तो फिर डॉक्टर ने कहा कि यार ये इस तरह के काम मत करो
0: जी। बिल्कुल,
1: तो जो उन्होंने दवाई वगैरह दी तब जाके मैं ठीक हुआ।
0: बिल्कुल सतपाल जी, तो इससे यही सीख मिली कि पहले बीमारी के बारे में जानो, उसके बाद इलाज के लिए काम करो।
1: जी जी जी जी, जी।

0: जी तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से अब दोबारा
1: मैं सभी को यही सलाह देना चाहूंगी, अच्छे से हॉस्पिटल में आप पीजीआई में जाइए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे, क्योंकि वो डॉक्टर सबसे पहले आपका देखेंगे कि रोग कॉज क्या है,
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद आपकी जो है सेहत, आपकी अपना एज, आपका जो है जो कंडीशन है आपकी, उसके अनुसार वो डोज डिसाइड करेंगे।
0: बिल्कुल, घरेलू नुस्खे जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कारगर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका इलाज ही कर दें।
1: जी जी, और मेरी वाइफ तो अभी भी मुझे वो कह के छेड़ती है कि आपने
0: पानी दोबारा पीजिए और अधिक। जी तो ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपने हमसे अपने विचार साझा किए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, शुक्रिया।
1: शुक्रिया सर।
0: बात करते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? यश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? पहले से ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, छोटे में ही जानना चाहेंगे आपकी तबीयत को देखते हुए आपके विचार। जी बिल्कुल जी, एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा यशपाल जी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपने कॉल किया, इतनी तबीयत आपकी ख़राब है तब भी हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, सीख तो यही है कि अगर आप नीम हकीम खतराए जान को ध्यान में रखेंगे तो हमेशा उस इंसान के पास पहले पहुंचेंगे जिसको उन चीज़ों का आइडिया हो और जिसने उस बारे में पढ़ाई की है, जो भी आपको तकलीफ़ हो।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं और जानते हैं क्या है विचार हमारे अगले कॉलर के। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा, सेक्टर 21 चंडीगढ़ से।
1: सतपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नीम हकीम खतरा ऐजान, क्या कहना चाहेंगे आप?
2: पहले तो सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी
2: कि पीजीआई के डिफरेंट डिपार्टमेंट से डॉक्टर जो आते हैं
1: जी
2: और उनका आप इंटरव्यू ऐसा लेते हैं कि हमारे कई क्वेश्चन उसमें शामिल हो जाते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो आपके इंटरव्यू को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ हमेशा
1: जी,
2: और काफी ज्ञान की प्राप्ति होती है
1: जी।
2: तो आज का जो विषय है, हेलो
1: जी जी हम सुन रहे हैं, आप बताइए।
2: आज का जो विषय है नीम हकीम खतराए जान
1: जी,
2: ये तो इसका मतलब यही है कि जानकार लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से डॉक्टर जो है हमारे,
1: बिल्कुल
2: उसकी सलाह के बिना पैथोलॉजिकल टेस्ट के और सारे ब्लड टेस्ट के आप अपना इलाज ना करवाएं
1: जी। बिल्कुल सही।
2: कभी सिर दर्द है, कुछ है हल्का फुल्का, रात में दर्द हो गया, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, कुछ घर के नुस्खे कुछ अपना सकते हैं
1: जी
2: इमीडिएट रिलीफ के लिए।
1: बिल्कुल सतपाल जी।
2: लेकिन

0: अगर कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर के पास जाए और उचित इलाज करवाए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सतपाल जी। और सतपाल जी, अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें, मान लीजिए एक बच्चा है और नई नई नौकरी पे लगा है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी सलाहें उसके माता पिता की तरफ से रहनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी जॉब करे या किस तरह से अपनी पढ़ाई करे या किस तरह से आगे बढ़ने के लिए अपने करियर में आगे किन चीज़ों को चुने। तो मेरे ख्याल से अगर वो भी इस कहावत के अंतर्गत आए कि नीम हकीम खतरा है जान, कि उसके करियर को एक तरह का खतरा है अगर वो सही सलाह नहीं लेता है, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: नहीं, सलाह तो सर उनको देनी चाहिए, सलाह देने के हकदार वो है
1: जी
0: जो अपने उस विषय में पारंगत है।
1: बिल्कुल सही।
0: या उन्होंने ऐसी चीज खाई है, ऐसी दवा ली है और उनसे फायदा हुआ है, और वो कोई अच्छे डॉक्टर का नाम सजेस्ट करे, अच्छे हॉस्पिटल का नाम सजेस्ट करे कि आप वहाँ जाके इलाज लो, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। वो एक माउथ पब्लिसिटी आम प्रक्रिया में आती है
1: जी।
0: हमें कहीं से लाभ होता है तो हम ये बात चार लोगों को बताते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो ये तो एक अलग बात होगी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना
1: जी,
0: लेकिन किसी को ये कहना कि आप ये दवा ले लो ऐसे हो जाएगा, आप ठीक हो जाओ, उससे ये बीमारी उसके शरीर पर क्यों आई है
1: जी,
0: ये बिना जांच पड़ताल के कोई भी दवा लेना, मैंने जैसे पहले कहा कि आप टेम्पररीली लीव के लिए एक दिन के लिए ले सकते हैं
1: जी,
0: लेकिन समस्या अगर गंभीर होती जा रही है तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर करवाएं। एक और मैं बात जोड़ना चाहूंगा
1: जी बिंद्रा जी,
0: लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाने से कतराते हैं कि वहाँ भीड़ है, टाइम लगेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं
1: जी।
0: प्राइवेट हॉस्पिटल में आजकल अच्छे हॉस्पिटल भी है, लेकिन कहीं ये समस्या भी आ गई है
1: जी
0: कि वो दवाई ऐसी लिखते हैं कि बाजार में उपलब्ध ना हो, और दवा उनके कोई खास केमिस्ट के यहाँ से मिले या उनके घर से मिले, तो ये समस्या भी है
1: जी।
0: तो इन बातों पर हमारे चिकित्सकों को भी ध्यान देना होगा कि लोगों को ज्यादा महंगी दवाई ना लिखें, बंदे के इनकम के अनुसार उनकी जो सामर्थ्य है उनका उस हिसाब से उनका इलाज करें तो ये अच्छा होगा।
1: बिल्कुल बिंद्रा जी, आपने कॉल किया, हमसे इतने अच्छे विचार साझा किए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सलाह अच्छी हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सलाह आपका इलाज बन जाए। गलत शुरुआत सही अंत तक आपको कभी पहुंचने नहीं दे सकती, इसलिए अपनी सेहत पर समझौता करना सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। तो सही समय पर सही डॉक्टर की सलाह लेना बहादुरी है, ना कि कमजोरी।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई,
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़

0: सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172।
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashvanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं। आइए जानते हैं आज के विषय के बारे में, क्या है हमारे अगले कॉलर के विचार। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
3: नमस्कार सर, मैं पुराना डिस्ट्रिक्ट सिकंदर से रविंदर कुमार बोल रहा हूं सर।
2: जी रविंदर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: शुक्रिया सर आपका।
2: जी क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के विषय में, नीम हकीम खतराए जान।
3: देखो जी, बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब जो बीमारी बढ़ जाती है तो फिर हम बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं
2: जी।
3: थोड़ी बीमारी के लिए कोई मतलब लापरवाही रहता है। तो मतलब ये तो है कि जब भी कोई आपको तकलीफ मतलब ज्यादा दिनों तक रहे फिर तो आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। बाकी ऐसा है कि थोड़ी बहुत ही जो तकलीफ है वो तो हम थोड़ी बहुत ही दवाई किसी से लेकर या घर के कोई करके और बोर कर लेते हैं, वो तो ठीक भी हो जाता है
2: बिल्कुल।
3: लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन ज्यादा चल जाए बीमारी तो फिर हमको एक्सपर्ट पे तो पास जाना ही होता है
2: बिल्कुल सही।
3: अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर बीमारी ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी तो बाद में हमको उतना ही मुश्किल होगा, फिर इलाज कराने में भी मुश्किल होगा और बीमारी भी बढ़ जाती है
2: बिल्कुल। और ऐसे में जरूरी है रविंदर जी कि हम जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे। मान लीजिए अगर गलती हो गई, क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है?
3: ऐसा वैसे हुआ तो नहीं है लेकिन मैं सोचता हूँ कि आसपास में ऐसा होता जरूर है क्योंकि लोग लापरवाह है। वो पहले तो जब महीने दो महीने ऐसे दवाइयाँ ले लेके खाते रहते हैं केमिस्ट से या RMP डॉक्टर हैं जो गांव में होते हैं उनसे लेते रहते हैं, लेकिन जब बीमारी ठीक नहीं होती तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो दूसरे डॉक्टरों को भी मुश्किल हो जाती है, एक्सपर्ट को भी उसको ठीक करने में। अगर हम पहली बार में वहाँ पहुँच जाए तो फिर तो वो जो बीमारी है वो जब छोटी होती तभी वो कैच कर लेते हैं तो इलाज अच्छे तरीके से उसका हो जाता है
2: बिल्कुल।
3: तो बाकी ये भी है कि मैं सभी डॉक्टरों को नहीं कहता, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो लोग मतलब ज्यादा डरते हैं उनसे जाने से, वो ऐसे टेस्ट लिख देते महंगे महंगे और केमिस्ट दवाइयों के बारे में भी उनकी है, दवाइयां भी महंगी महंगी लिखते हैं तो लोग मतलब पैसे के डर से नहीं उनके पास जाते कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर पैसा हो तो फिर तो वो लोग चले जाएं। कुछ डॉक्टर भी वैसे हैं ऐसे जो मतलब बेमायने ऐसे टेस्ट लिख देते हैं और दवाइयां भी इतनी महंगी लिखते हैं उनसे भी कमीशन वगैरह लेते हैं
2: बिल्कुल।
3: तो वो लोग डरते हैं ऐसे से।
2: रविंदर जी इसलिए तो कहते हैं कि इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए बल्कि आपका चुनाव जो है वो सही होना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों से बचना चाहिए आपको और हर छोटी परेशानी को इंसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि बाद में वो बड़ी समस्या बन सकती है।
3: आजकल जैसी बीमारियां क्रॉनिक लग रही हैं लोगों को
2: जी
3: वो तो ऐसे ही है कि वो तो अगर शुरू में पकड़ी जाए तो तभी इंसान ठीक हो सकता है, नहीं तो महीना दो महीने निकल जाए तो बीमारी वो कहीं कहीं पहुंच जाती है
2: बिल्कुल,
3: फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो हम तो यही कहते हैं कि जब आपको लगे कि ये आम दवाइयों से नहीं ठीक होने वाली तो एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक्सपर्ट जो भी है।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने रविंदर जी, कॉल किया आपने, अपने विचार साझा किए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: शुक्रिया सर आपका।
2: दोस्तों इलाज में जैसा कि हमने कहा कि इलाज में देरी नहीं बल्कि सही चुनाव बहुत ही जरूरी होता है। बीमारी से लड़ना है तो सही डॉक्टर चुनना भी इलाज का ही हिस्सा है और वहीं पर आपको चुनाव करना है कि आपका चुनाव सही है या नहीं।

0: पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है विचार हमारे अगले कॉलर के आज के विषय के बारे में।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं, आइए जानते हैं क्या है विचार हमारे अगले कॉलर के आज के विषय के बारे में। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
3: अमृता डोगरा बोल रही हूं सर, हिमाचल हमीरपुर से।
2: अमृता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आज का विषय आप जानते हैं क्या है?
3: हाँ जी हाँ जी, नेम हकीम खतरा जान।
2: बिल्कुल, तो क्या है आपके विचार?
3: जैसे इस मुहावरे को कैसे भी आप मीनिंग ले सकते हैं, मैंने जोक टाइप है कि आज मैंने फिर एक नीम के पेड़ का वीडियो बनाया और जोक डालना की नीम के पेड़ के नीचे मत खड़ा हो वरना तेरी जान को खतरा है। टीचर को ये बच्चा ये जवाब देता है
2: जी, बहुत
3: हंसने की बात है
2: जी।
3: पर तो मैं कहूंगी कि जो डॉक्टर बनते हैं इतने 6 साल वो मतलब पढ़ाई करने के बाद 1-2 साल हाउस जो और मतलब जिसको भी सीखते हैं कि कैसे ऑपरेशन करने की, जिंदा व्यक्ति को तुम ऑपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे से एक चूक छोटी छोटी भी हो गई जितनी तो हमारे बाहर नसें नहीं दिखती है, जितनी शरीर के अंदर है कौन सी कहाँ जा रही है वेन
2: बिल्कुल
3: या आर्टरीज, तो वो एम्फीथिएटर में भी देखते हैं सीखते हैं तब जाके डॉक्टर बनते हैं
2: जी।
3: अब एक क्लिनिक है जिसमें जाके हम मल्टीपल बीमारियों का इलाज करवाने चले जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक हो गए और अंदर से बीमारी बढ़ती जा रही है
2: जी।
3: 2 मिनट के लिए सप्रेस हो जाती है। और ऐसे ही मैं बोलना चाहूंगी कि एक पिक्चर थी राजेश खन्ना की, उसमें से 3 बच्चे बताए तो तीनों बड़े होके अलग अलग हो जाते हैं, तो वो मैकेनिक बन जाते हैं राजेश खन्ना खुद, तो बेटे की कार आती है उसमें ना उन्होंने देखा इंजन को और एक हथौड़ा मारा और बोला 100 रुपया, बोले 100 रुपये एक हथौड़ा मारने के, कहते कि 99 रुपीज इसके हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ है।
2: बिल्कुल, और
3: एक रुपया हथौड़ा
2: जी, बिल्कुल सही कहा।
3: तो टेस्ट
2: जी,
3: बीमारी से पहले टेस्ट होना ही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं
2: और एक्सपर्ट्स की राय बहुत जरूरी है ताकि वो बता सकें कि कहाँ पर दिक्कत है,
3: कहाँ पर बीमारी, हम इलाज किस चीज का कर रहे हैं सर,
2: ताकि वो थोड़ा ढूंढ सके कहाँ मारना है।
3: बिल्कुल। तो सर एक ना मैं अपने स्टूडेंट को कहती थी कि हम टीचर हैं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं,
2: बिल्कुल
3: बस गाइड है, आप गाइड से पढ़ो, अगर गाइड से काम करना है, बुक लेके नहीं आते थे,
2: दुनिया भर की किताबें मार्केट में पड़ी हैं,
3: मैंने बोला बट आप देखो कि फिर आप दवाई ले लो ना, आपके सिर दर्द मेडिकल स्टोर जाओ, बीच में डॉक्टर को क्यों डाल रहे हो,
2: बिल्कुल
3: उसका क्या रोल है, उसने ये बताना है इसमें से कौन सी मेडिसिन है, आपको क्या प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन लो, बुखार के ही टाइप का है
2: जी।
3: एक ही टाइप का नहीं है, तो मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ, इतना ही बोलूंगी सर
2: जी।

गाने सुहाने कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और आपको अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं अवतार फिल्म से किशोर कुमार व साथियों की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

अभिमान फिल्म का आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और मधुर संगीत से सजाया एसडी बर्मन ने। गाने सुहाने कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रोटी फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बातों बातों में से। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की, गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और संगीत राजेश रोशन का।

और कार्यक्रम गाने सुहाने के अंत में आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: जाता हूँ।
1: इस गीत के साथ ही गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
2: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
3: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
2: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
4: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
3: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
3: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शेरो नगमा।

दोस्तों, जुल्फें हुस्न की सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि ये उस रहस्य का धागा भी हैं जो धीरे धीरे मोहब्बत की दास्तां बुनता है। तेरी जुल्फें हैं या रातों का समंदर, तेरी जुल्फें हैं या रातों का समंदर, कोई डूब जाए तो उसे फिर किनारा ना मिले।

0: कभी जुल्फों से ढकी आंखें तो कभी जुल्फों की वो एक लट जो कातिल अदा से चेहरे से हटाई जाती है। बस यही तो वो अदा है जो दिल को घायल कर जाती है। जुल्फें जो उसके चेहरे पर गिरती हैं, काली घटाएं चांद को चूमती हैं। जुल्फें जो उसके चेहरे पर गिरती हैं, काली घटाएं चांद को चूमती हैं। हर लम्हा थम सा जाता है जब वो जुल्फों से अपना चेहरा छुपाती है।
1: जुल्फों को

और दोस्तों, कई बार जुल्फों का जादू कुछ इस कदर चलता है कि जी चाहता है जिंदगी की हर शाम इन्हीं जुल्फों के साए में गुजर जाए। तेरी जुल्फों के साए में शाम कर लूं, तेरी जुल्फों के साए में शाम कर लूं, एक छोटी सी उम्र तमाम कर लूं।

हुस्न की तारीफ जुल्फों से ही होकर निकलती है। हवाओं की हर रस्म जानती हैं जुल्फें, कहां किस मोड़ पर हवाओं के साथ रुकना और कहां बिखरना है, हर रस्म निभाती हैं। या यूं कह लें, जुल्फें तेरी हवाओं की रस्में जानती हैं, जुल्फें तेरी हवाओं की रस्में जानती हैं, किस मोड़ पे है रुकना और कहां है बिखर जाना।

भीगी जुल्फें और उन पर पानी की बूंदों के मोती हर दिल को छू जाते हैं। ऐसे में उनका जुल्फों को झटकना किसी कयामत से कम नहीं होता। भीगी जुल्फों को झटकना तेरा ले गया सुकून मेरा, भीगी जुल्फों को झटकना तेरा ले गया सुकून मेरा, जुल्फों से झटक कर मोती ऐसे बिखेरे तूने, जुल्फों से झटक कर मोती ऐसे बिखेरे तूने, दिल जहां सब लूट लिया मेरा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और नगमा। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, 12 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिरसिक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
3: गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल है और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी तोड़ ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा। मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल है और संगीतकार है सलील चौधरी।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

0: हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आगे दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:28 पर। कार्यक्रम सुरीला सफर होगा दिन में 1:30 बजे त्रिवेणी। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 2 बजे।

30 मिनट पर और कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सेहतनामा। एक विशेष भेंट वार्ता हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:05 पर और इसमें मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्री अरुण अग्रवाल से बातचीत सुनवाई जाएगी लोक अदालत के बारे में। इसका प्रसारण समय एक बार फिर से नोट कर लें, शाम 5:05। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा शाम 5:30 पर। हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा पेश की जाएगी शाम 6:30 पर। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:35 पर, रात 7:47 पर और फिर सुरसांज कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे नाटिका सुनिए वो आए घर में हमारे। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेता अमरीश पुरी पर केंद्रित रहेगा। और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: 107.7 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है।

0: इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22,00,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $79 पर आ गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पश्चिमी एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर दिए जाने के बाद ये गिरावट आई। गनौर क्षेत्र के गांव खुबड़ू में आज सुबह सोनीपत अपराध शाखा और गनौर पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक सूचना के आधार पर आरोपी कोई गांव खुबड़ू के पास खेतों में घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच एजेंसी के एक हवलदार देवेंद्र के हाथ में भी गोली लगी। उसे उपचार के लिए खानपुर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गांव अटायल निवासी गोपाल हत्या के दो मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। वह इसी वर्ष मार्च में पैरोल पर जेल से बाहर आया था लेकिन पैरोल खत्म होने पर 30 मई को वापस जेल जाने की बजाय भूमिगत हो गया। इसके बाद उसने सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोपाल पर हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों सहित करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। पंजाब दे राजपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने विशेष टीपर सोध SIR 2026 मुहिम दे तहत वोटर सूचियां नूं उदीक स्टीक अपडेट अते समावेशी बनाउण दे उपरालियां दी शलाघा कीती है। उन्हां ने सारे योग वोटरां नूं अपने वेरवियां दी पुष्टि करन, जरूरी सोध अते अपडेशन समय सिर करवाउण अते बूथ लैवल अफसरां BLOs नाल पूरा सहयोग करन दी अपील कीती तां कि वोटर सूचियां विच शुद्धता यकीनी बनाई जा सके। श्री कटारिया ने कहा कि इक स्टीक अते अपडेट वोटर सूचियां मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद ने। उन्होंने नागरिकों इस महत्वपूर्ण लोकतंत्री प्रक्रिया को मजबूत बनाने हित इस मुहिम च सरगर्म भागीदारी की अपील की थी। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में आयोजित फ्यूजन फैसट 2026 तहत विश्व संगीत दिवस 2026 के समारोह को संबोधन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि संगीत एक आलमी भाषा है जो सब प्रकार दी हदा पार करके लोगों को जोड़न, उन्हों का आत्मविश्वास बढ़ाउण अते सुचारू समाजिक बदलाव लियाउण दी समर्था रखती है। इस प्रोग्राम च संगीत, नृत्य अते विजुअल आर्ट के जरिए दिव्यांग कलाकारां अते बच्चों की असाधारण प्रतिभा, रचनात्मकता अते दृढ़ संकल्प का विखाला किया गया। चंडीगढ़ के सभ्याचारक मामलों बारे विभाग वालों करवाए इस समारोह च बतौर मुख मेहमान शिरकत करदिया श्री कटारिया ने कहा कि दिव्यांग कलाकारां दी प्रतिभा, दृढ़ इच्छा शक्ति अते उपलब्धियां समाज

0: प्रेरणा दा स्रोत ने अते इह सिद्ध करदियां ने कि प्रतिभा किसी भी शरीरक हद की मोहताज नहीं हुंदी। श्री कटारिया ने दिव्यांग कलाकारां लई 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार देण दा ऐलान किया। इस प्रकार की यह पहली पहल है जिसका उद्देश उन्हां दीआं कलात्मक उपलब्धियां अते समाज विच उन्हां दे योगदान नूं सन्मानित करना है। इस प्रोग्राम नूं नशा मुक्त भारत के संकल्प नाल जोड़ते हुए प्रशासक ने कहा कि सभ्याचारक अते रचनात्मक गतिविधियां नौजवानों नूं सकारात्मक बदल प्रदान करदियां ने अते उन्हां दी ऊर्जा नूं राष्ट्र निर्माण अते शख्सियत विकास की दिशा च प्रेरित करदियां ने। उन्होंने कलाकारां सिखकां संस्थावां ते नागरिकां नूं तंदुरुस्त समावेशी ते नशा मुक्त समाज के निर्माण लई सांझा उपराला करन दा सद्दा दित्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने अज प्रसिद्ध खेतीबाड़ी अर्थशास्त्री सरदारा सिंह चौहल नाल लुधियाना स्थित उन्होंने निवास स्थान से मुलाकात की। इस मौके पंजाब बीजेपी प्रधान केवल सिंह ढिल्लों और होर सीनियर बीजेपी आगू भी मौजूद रहे। उन्होंने श्री चौहल नूं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल संबंधी पुस्तक भी भेंट की। मुलाकात तो बाद श्री नवीन ने कहा,
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: श्रोतियां नूं सूचित किया जाता है कि आकाशवाणी का पिछले कुछ दिनों तो शामी 7 बजे तो 7:10 तक प्रसारित किया जा रहा खबरों का राष्ट्रीय बुलेटिन आज तो पहला वांग शामी 7:30 बजे तो 7:40 तक प्रसारित किया जाएगा। गुरदासपुर के सठियाली हैड वर्कस तो कुछ ही दूरी से अपर बारी दुआब नहर च पे करीब 40 फुट के वड्डे पाड़ कारण नेड़ले रिहायशी इलाकों घर से सैकड़े एकड़ खेतों छड़ वर्गे हालात बन गए हैं, जिस नाल लोगों का भारी माली नुकसान होया। कई कई फुट तक पानी भरन कारण कणक घरेलू समान से होर कीमती वस्तुओं को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सरकार तो मदद की मांग की है। उधर नहरी विभाग के SDO जसबीर सिंह ने कहा कि स्थिति काबू हेठ करने लिए पानी के वहां को दूजी नहर वाल मुड़िया गया है। इस दे नाल ही पोकलेन ते JCB मशीनों की मदद नाल नहर के 40 फुट के पूरन दे यत्न चंगी पद्धर ते जारी ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जिला जलंधर के पुलिस स्टेशन फिल्लौर विखे तैनात सब इंस्पैक्टर अमनदीप कौर नूं 20,000 रुपए की रिश्वत लेंदे रंगे हत्थी काबू किया है। ब्यूरो के बुलारे ने दस्सिया कि मुलजम नूं मोहल्ला चौधरियां वासी वालों दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार से गिरफ्तार किया गया। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कुछ थावां ते अज तो 24 जून तक गरज चमक नाल तेज हवावां चलन ते हल्की बारिश होण बारे येलो अलर्ट जारी कीता है। इस दौरान बीते 24 घंटियां च पंजाब ते हरियाणा च वध तों वध तापमान 36 डिग्री तों 42 डिग्री सैलसीयस दरमियान रहा। पंजाब दे बठिंडा च यह 42.5 डिग्री सैलसीयस ते हरियाणा दे रोहतक च 42.1 डिग्री दर्ज किया गया। चंडीगढ़ च वध तों वध तापमान 39.8 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया, जबकि बीती रात कई थावां ते आई हनेरी ते हल्की बारिश तों बाद अज सवेरे दर्ज किए गए घट्टो घट तापमान मुताबक पठानकोट के थीन डैम खेत्र च 23.2 डिग्री, हरियाणा के भिवानी च 21.5 अते चंडीगढ़ च घट्टो घट तापमान 22.4 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। उधर फाजिलका के अबोहर च बीती रात आई हनेरी दौरान दरख्त डिगण करके एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म हुई। साडा राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर 1:40 ते। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं तुम बिन फिल्म के गीत से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। गीतकार हैं फैज अनवर, संगीतकार निखिल विनय।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गीत। आवाजें हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
1: हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर व शायरी की बात हो रही है, तो जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहाँरा का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो बहुत खुश होते हैं, क्या बात है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मधोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारवां गुजर गया और हम गुबार, क्या बात है। जॉन एलियट की पंक्तियां ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ करें या कहने में कि जो भी खुश है हम उसे जलते हैं, यूं जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेर व शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है। और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियां या बड़ी शौर वीरता की पंक्तियां, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो, तो जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की गायिका को पहचानिए। बहुत आसान है इस आवाज को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज को पहचानिए और पहुंचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत, सहरयार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनको हम साझा करते हैं कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उन लोगों की कमी नहीं शाक पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूं तेरी याद रात भर आई, क्या बात है। हमारे को श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे, दोस्तों के अनुरोध पर, तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए, हसर जयपुरी की पंक्तियां बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित है और वह उनका सदा साथ देती है और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं, और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप बढ़िया कोई जबरदस्त सी, बड़ी जोरदार सी, कोई बढ़िया सी शायरी दीजिए जो देशभक्ति की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक

तब तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आग बरस रही है, इस पर लिखते हैं, इस समय दिल शायराना होने के बजाय दिल गर्मी से जल रहा है। अरे बारिश हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे, मेरे प्रेम कहानी का रशाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारे। शेर हमारे एक ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है, दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जी वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहां कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। बिल्कुल सही, बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें सुदेश से प्यार नहीं। मेरे श्रोता लिख रही है कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में। बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने है, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियां देशभक्ति से भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

मिर्ज़ा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आंखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाडनी से जलो, प्रवीर हो जाए जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदमी खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली, जो कविता उन्हें पसंद है उसके बारे में जिक्र किया है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूँ, तेरी गली ना छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, लिखती मानवता भट गई ये युद्ध के ऊपर ये कविता लिखती हैं, और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ। बस करो अब ये युद्ध, बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गए। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियां बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, कि जब इसमें जमी अपनी और अपना आसमा होगा। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं, और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ, और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ। और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो जरूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है। और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा,

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से। हम सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में संतोष आनंद की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज में संतोष आनंद की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ. और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है ऐसा उन्होंने कहा. हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी कहीं एक संतोष होता था शायर गजल बन गई है दर्द की राजधानी. ये वो लिखते हैं संतोष आनंद की संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है. और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है यानी समझाया है उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है उसके लिए भी धन्यवाद. हमारे श्रोता लिखते हैं तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है. हाँ इस बात को इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया परंतु ये उसके वर्जन में थे उस गाने में थे. हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो दम घुटने से पहले आवाज उठा लो. जी बहुत बढ़िया बात और बहुत प्यारा सुरीला सफर आप सबके साथ रहा उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद. और आप सबका जीवन मंगलमय सुख हो शांति हो कल्याण हो बस यही प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए. नमस्कार.

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटकदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

0: जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिर दर्द या दूसरी तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल होगा।
1: अरे मेरा गुरु रखड़ा।

0: पंडा आए आयुर्वेद के पंडा
1: आए आयुर्वेद के पंडा लेके दवा का डंडा है। बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा।
0: अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंदा, और आसमान पर उड़े हमारे मतलब ध्वज का झंडा
1: है। धरती माता
0: हाँ, धरती माता।

0: ये वो बैर नहीं है जिसकी जगह तुड़ावे हाँसी और बचपन ही में निकल पड़े थे देकर सबको फांसी। ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे होके ये सन्यासी।
1: अरे ऊँट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे ऊँट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैजा, क्या है तुम्हारी खासी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जम राजा को फांसी। हो बोलो

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल है। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8 लाख

0: 15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में है, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक

0: मते जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान

0: पड़ने को बाद द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, भरत व्यास के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, संजोग फिल्म से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
0: सही बात,
1: सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
0: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है, जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल, और दीपा आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे और हमारे साथी जो कुछ लिखकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
0: बिल्कुल, और देखो वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल, और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल, और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: की सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं। और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
0: पिछले भाग में आपने सुना,
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
5: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
6: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।

0: श्रृंखला चौथा और अंतिम भाग।
1: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुध ली?
1: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो होकर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदे निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
3: अम्मा ये देखता क्या हूं?
4: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
3: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
4: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
3: बहुत अच्छा होता।
2: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
3: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
2: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
1: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
3: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता।

0: की आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
1: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
2: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्त्र नाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया।

0: सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पतिभक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
1: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
1: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिक लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
2: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
3: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
1: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
3: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी

0: ये बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
1: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्तें, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से भी कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
1: हाँ, तो ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई है, जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
0: बिल्कुल। और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक बच्चों की मदद करें।
1: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है, जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था,
0: रूटीन ही नहीं था कहना चाहिए,
1: और अब एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो हम
1: वहीं देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं

0: में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए। मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था। लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना?
0: बिल्कुल, क्योंकि तो, ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
1: बिल्कुल। तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराया नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
1: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियाबी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती है।
0: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश के फुहारे आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको, तो उसके लिए कि पहले तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए हमारे

0: साथी लिख रहे हैं, और साथ में आपके अंदर घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। और
1: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से है ये, और कह रही है कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी, और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है, गर्मी और बरसात की जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़े का कि साल भर इसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है
0: उसी में,
1: तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी
0: बिल्कुल है। और शाम हो, जैसे शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
1: और इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें, बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में है तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
0: और देखिए इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए, अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
1: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

0: फिर से तो अब तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद जो सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनिये की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी सी हुई होनी चाहिए,

कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको

अगर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए, भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर, पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी उलिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर

0: अब मटर आप उबाल लीजिए, भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए। उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फैटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भो रखना है। और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजा कर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के

0: तो दीपा देखो बात तो करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा महेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाए, छोटे शहरों में चले जाए, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण

0: इम्पोर्टेंट आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है, हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो हम सब ने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
0: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है, अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जाँच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह रह सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
1: जी।
0: कई नई अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की,

0: काफी काफी साल, फिर 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की, फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊँगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हमने ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम

0: बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें
0: जी।
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाइयां, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं जिससे फैटी लिवर भी कम होता है, लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3-6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर, स्ट्रेस, वो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, पर उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
0: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को ले, 100 लोगों को ले जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, अभी ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई जाते
0: हैं। जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को?
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, थोड़ी बीट होनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग।

0: वाला गाना,
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है।
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर है और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है। सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा

0: सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है, कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
1: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
0: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
1: डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3-4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
1: ओके,
0: सो इट वर्क्स बोथ फेज।
1: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन, चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
1: जी, कई बार लोग, ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके 2 जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ

0: रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है. और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में. तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है. इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए. हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम. इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर होने के चांस कम हो जाते हैं.
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजे कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें. इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें. और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब.
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं. अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे. सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं, ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा मुझे, किसी ने लिखा मेरी बहन को है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो, अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी, हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ, लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक, खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40

0: 50, थोड़ा एज हो गई और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रहा, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
1: जी, जी, जी.
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: Correct.
1: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का एक गाना है, छैया छैया।
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई

0: अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए, कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं, है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे आपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
1: जी जी,
0: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
1: जी, लेकिन वो आदत न डाल ले, ये गलत है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
0: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है, तो थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहां से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।

0: क्या करूं, हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेत्से बटमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईए, डीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली

0: गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं लोक अदालत के बारे में मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंडीगढ़ श्री अरुण कुमार अग्रवाल से एक विशेष भेंट वार्ता। इनसे बातचीत की है अश्वनी कुमार ने।

0: श्रोताओं, कभी कभार आपको अदालत में जाने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो नहीं पढ़नी चाहिए, परंतु अगर पड़ती है तो कई तरह से आप अदालत को अप्रोच करते हैं और कभी कभार आप मीडिएशन द्वारा अपने मामलों का निपटारा करते हैं, कभी आर्बिट्रेशन द्वारा अपने मामलों का निपटारा आप कर लेते हैं। परंतु एक होती है लोक अदालत, जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा रहती है, और ये पहले तो कभी कभार सुनने में आता था, परंतु अब कई तरह की लोक अदालत लगनी शुरू हो गई हैं। इन सब पर हम विस्तार से आज जानेंगे। अरुण कुमार अग्रवाल, मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंडीगढ़ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू जी।
0: और जैसे मैंने श्रोताओं से कहा ही है कि अलग अलग तरह की लोक अदालत होती हैं, तो ये जो लोक अदालत है उसको कॉन्स्टिट्यूट किस तरह से किया जाता है अग्रवाल साहब?
1: आकाशवाणी के श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि जब भी दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों में कोई भी आपसी विवाद होता है तो जनरली आम तौर पे उस विवाद को कैसे हल करते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करती है, दूसरी पार्टी अपीयर होकर उस केस को कंटेस्ट करती है, और इस सारे प्रोसेस में सालों लग जाते हैं पर विवाद का समाधान नहीं होता। सेक्शन 89 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत कुछ वैकल्पिक माध्यम भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन एवं लोक अदालत
0: जी।
1: तो लोक अदालत एक माध्यम है अपने विवाद को वैकल्पिक मंच पे हल करने का। जो लोक अदालत, जहां तक कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। जब भी कोई लोक अदालत होती है तो उसको एक जुडिशियल ऑफिसर, जो कि सर्विंग भी हो सकता है और रिटायर्ड भी, वो इसको प्रेजाइड ओवर करता है, और इसमें दो अन्य मेंबर होते हैं, इसमें से एक जनरली वकील साहब होते हैं और दूसरे सोशल वर्कर
0: जी। और अग्रवाल साहब, ये कौन कौन से मैटर हैं लोक अदालत में जिनका निपटान किया जा सकता है?
1: लोक अदालत में कोई भी सिविल केस हो उसका निपटारा किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स, जिसमें के समझौता वर्जित है, उनको छोड़ के बाकी सभी मैटर्स क्रिमिनल भी लोक अदालत के अंतर्गत लिए जा सकते हैं।
0: तो आपने बताया कि अलग अलग तरह के जो मैटर इसमें निपटारा जिनका किया जा सकता है, और अलग अलग तरह की लोक अदालतों के बारे में भी बताया जाता है, ये कौन कौन सी लोक अदालतें होती हैं?
1: जी, आज हम सभी तरह की लोक अदालत के बारे में बात करेंगे। एक होती है हमारी नेशनल लोक अदालत, जो कि क्वार्टरली एक बार लगती है। उसके अलावा एक है हमारी परमानेंट लोक अदालत, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, और उसके अलावा एक और लोक अदालत स्पेशल लोक अदालत होती है, जो कभी कभी किसी स्पेशल टॉपिक पे लगती है, किसी खास तरह के केसेस के लिए लगती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लोक अदालत, जिसको हमने नाम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह 2026। तो इन सब लोक अदालत के बारे में आज हम विस्तार में बताएंगे आपको।
0: जी जी जी।
1: तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत एक रेगुलर फीचर है कोर्ट्स में, हर क्वार्टर में 3 महीने में एक बार लगती है, इसका ये एक रेगुलर फीचर है कोर्ट्स में आजकल।

0: नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की डायरेक्शन के मुताबिक ये लोक अदालत एक बार क्वार्टर में लगती ही लगती है। इसमें सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, रेंट केसेस, चेक बाउंसिंग केसेस और क्रिमिनल मैटर्स जिनमें के समझौता हो सकता है वो सब मैटर्स लिए जाते हैं
1: जी।
0: और इसके अलावा इसमें कुछ केसेस ऐसे भी लिए जाते हैं जो अभी तक कोर्ट में पहुंचे ही नहीं, उनको हम कहते हैं प्री लिटिगेशन मैटर्स। दो पार्टीज में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कोर्ट में जाने से पहले वो प्री लिटिगेटिव लोक अदालत में अपना मैटर लिखवा के उसको वहीं पे रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। तो नेशनल लोक अदालत क्वार्टर में एक बार लगती है, इसके अलावा होती है एक स्पेशल लोक अदालत जो कि किसी खास तरह के केसेस के लिए लगती है, जैसे कि चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक स्पेशल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएगी 18 जुलाई 2026 को, इसमें मैटर्स लिए जाएंगे, चेक बाउंस मैटर्स, फैमिली मैटर्स और एमएसीटी केसेस। एमएसीटी केसेस वो होते हैं जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना में उसको इंजरी होती है या डेथ हो जाती है, तो उसका क्लेम लेने के लिए ये एमएसीटी केसेस उसमें लिए जाते हैं। तो ये तीन तरह के केसेस 18/7/2026 को एक स्पेशल लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगाई जाएगी, उसमें ये लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ ट्रैफिक चलान जो कि कानूनी तौर पर इस लोक अदालत में लिए जा सकते हैं वो भी लिए जाएंगे।
1: जी जी, तो ये लोक अदालत हेल्ड करने की या इसको आयोजन करने की धारणा क्या है, इसके पीछे संशय क्या है, क्यों इससे फायदा होता है लोगों को?
0: लोक अदालत ऑर्गेनाइज करने के पीछे एक तो सबसे पहला मंतव्य है कि जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उन पे बर्डन कम करना
1: जी,
0: और दूसरा पार्टीज को इन एक्सपेंसिव और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना। जैसे कि लोक अदालत का कोई भी निर्णय होता है ये दोनों पार्टी की आपस में सहमति के बेस पे होता है, इसका जो भी डिसीजन लोक अदालत करती है उसकी कोई अपील नहीं होती, वो डिसीजन जहां पे लोक अदालत का फैसला हुआ वहीं पे फाइनल हो जाता है। इसमें एक और बेनिफिट है कि जो भी कोर्ट फीस, अदालत की फीस किसी पार्टी ने पे की हुई है वो भी लोक अदालत में समझौता होने के समय वो रिफंड कर दी जाती है। जैसे कि अगर आपने किसी के ऊपर मनी रिकवरी का केस डाला हुआ है उसमें कोर्ट फीस कंपलसरी है, तो अगर उसका डिसीजन लोक अदालत में होता है तो वो फीस अदालत रिफंड कर देती है
1: जी। और किसी प्रकार की लीगल सहायता भी दी जाती है इसमें?
0: इसमें लीगल सहायता जनरली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज देती हैं, किसी भी व्यक्ति जो के कोई भी इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड है या कस्टडी में है तो उसको लीगल सहायता लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें के उसको एक एडवोकेट या वकील की फैसिलिटी दी जाती है और केस पे होने वाला सारा खर्चा वो भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज वहन करती हैं
1: जी। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में हैं अरुण कुमार अग्रवाल, मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंडीगढ़, और हम जान रहे हैं लोक अदालत के बारे में विस्तार से चर्चा हो रही है। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ और हमारे साथ हैं इस विशेष कार्यक्रम में अरुण कुमार अग्रवाल, मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंडीगढ़। इनसे चर्चा हो रही है लोक अदालत पर। अब अग्रवाल साहब, हम जानना चाहेंगे कि परमानेंट लोक अदालत क्या होती है।
1: परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एक ऐसी लोक अदालत है जिसमें के बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के डिस्प्यूट्स कोर्ट में जाने से पहले ही हल किए जा सकते हैं। आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता कि ये फैसिलिटी सरकार द्वारा दी गई है, पर सेक्टर 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ये बहुत देर पहले इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल, टेलीग्राफ या टेलीफोन सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, वाटर सर्विस, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, हाउसिंग और रियल एस्टेट सर्विस, बैंकिंग, ओल्ड एज पेंशन, इसके अलावा बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो नोटिफाई की गई हैं, इन सब का अगर किसी का कोई भी डिस्प्यूट है तो वो इस लोक अदालत को अप्रोच कर सकता है।
0: इस तरह की यूटिलिटी सर्विसेज में समस्या अगर किसी को आ रही है तो अदालत में सीधे जाने के बजाय वो परमानेंट लोक अदालत में जा सकता है।
1: वो बिल्कुल परमानेंट लोक अदालत में जा सकता है और बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें वकील करना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक सिंपल पेज पे एप्लीकेशन लिख के परमानेंट लोक अदालत के जो चेयरमैन है उनके आगे देनी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन खुद नहीं लिख सकता तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के फ्रंट ऑफिस में जा सकता है। वहां पे हमारे रिटेनर एडवोकेट उसकी हेल्प करके वो एप्लीकेशन लिखवा देते हैं और जैसे ही वो परमानेंट लोक अदालत में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, दूसरी पार्टी को बुला के दोनों पार्टीज को सुन के उसमें पहली अटेम्प्ट होती है कि उनका आपसी समझौता हो जाए कोई ना कोई।
0: हाँ जी।
1: अगर कोई समझौता नहीं होता तो इस लोक अदालत को ये भी पावर है कि ये ऑन मेरिट केस डिसाइड कर सकती है। जैसे हम सपोज करते हैं कि आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया जबकि वास्तव में आपने उतनी बिजली यूज नहीं की
0: जी।
1: तो इसके लिए अगर आप बिजली डिपार्टमेंट में जाओगे तो हो सकता है कि वहां आपकी कोई सुनवाई ना हो
0: जी, जी।
1: पर अगर आप परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को अप्रोच करते हैं, आपका कोई खर्चा नहीं होगा और जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे दूसरी पार्टी को बुला के पूछा जाएगा कि इतना भारी भरकम बिल क्यों आया है और उसका समाधान वहीं किया जाता है। एक और बेनिफिट इसका बताना चाहूंगा, इस लोक अदालत का जो फैसला है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, उसके अगेंस्ट सिर्फ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है।
0: जी जी जी जी। तो आपने आज बहुत तरह की लोक अदालत के बारे में बताया,

0: और आप इसके बारे में और चर्चा करना चाहते हो?
1: इसके अलावा मैं आकाशवाणी के श्रोताओं को बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल लोक अदालत के बारे में।
0: जी जी।
1: जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है समाधान समारोह 2026। इसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मीडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइजेशन अक्रॉस द नेशन।
0: जी।
1: इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामले लंबित है जिनमें समझौता हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई करके देश भर के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को वो केसेस की लिस्ट भेज दी है, पार्टीज के नाम भेज दिए हैं। उन सभी पार्टीज को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से नोटिसेज इशू किए जा रहे हैं और जैसे ही वो पार्टीज लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के ऑफिस में आती हैं उनकी कंसेंट लेके फिर उसमें मीडिएशन की जाती है। उनको समझाया जाता है कि आपका केस समझौते के जरिए अगर हल होता है तो ये दोनों पार्टियों की जीत होगी।
0: जी।
1: तो अगर मीडिएशन के जरिए वो केस सेटल हो जाता है तो उसकी जो सेटलमेंट डीड है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगी और उसका डिसीजन उस सेटलमेंट के बेस पे होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लोक अदालत समाधान समारोह है ये 21 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ था और इसका अंत होगा 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को और बीच का जो 4 महीने का पीरियड है इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के ऑफिसेज में पार्टीज को बुला के उनमें समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें कौन कौन से केस लगेंगे? एक्सीडेंट क्लेम केसेस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, मकान मालिक और किराएदार के मध्य में विवाद, लैंड एक्विजिशन मैटर्स, चेक बाउंसिंग केसेस, लेबर मैटर्स, सर्विस मैटर्स और बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो इस लोक अदालत में लिए जाएंगे। इसके अलावा मैं श्रोताओं को यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से नोटिस नहीं आया पर आपका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस केस को आप इस लोक अदालत के माध्यम से हल करना चाहते हैं तो इसके लिए सभी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की वेबसाइट पे एक गूगल लिंक दिया हुआ है। आप उस गूगल लिंक पे 31 जुलाई 2026 से पहले पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका केस इस लोक अदालत में लिया जा सकता है।
0: जी, आपके कहने का मतलब है कि जो भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस की वेबसाइट है उस पे जाकर जो गूगल लिंक है उसमें 31 जुलाई से पहले पहले आवेदन करना होगा।
1: आवेदन कर सकते हैं और फिर जैसे ही आवेदन आएगा तो उसमें दूसरी पार्टी को भी नोटिस इश्यू किया जाएगा। दूसरी पार्टी अगर कहती है, मान जाती है कि हाँ मैं मीडिएशन के लिए रेडी हूँ तो उस केस में भी हम एफर्ट करेंगे।
0: जी जी जी। तो इस प्रकार के प्रयासों से लगता है कि काफी जो केस पेंडेंसी है उसमें कमी आने की संभावना है।
1: बहुत संभावना है, निचली अदालतों में नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी।
0: जी जी जी। तो अरुण कुमार अग्रवाल, मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंडीगढ़, आज आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और लोक अदालतों के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर और आकाशवाणी के श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी। इसी के साथ ये विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। अश्विनी कुमार को आज्ञा दें, आज के इस विशेष कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बाबा का।

अभी आप सुन रहे थे लोक अदालत के बारे में। मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंडीगढ़ श्री अरुण कुमार अग्रवाल से एक विशेष भेंट वार्ता, इनसे बात की थी अश्विनी कुमार ने। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।

0: या पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी

0: गाड़ी या घरेलू सामान।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत अनु मलिका, और फिल्म है जोश।

ये गीत अभी आपने सुना जोश फिल्म से। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।

इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्ज्य स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औरव संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।

0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 1667 पर और बाइल से मुक्ति पाएं।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती के अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियों नूं रखण दा प्रबंध किया गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग जां संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके का लाभ लै सकते ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली दे पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाउणा लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तों सिखलाई दा मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 01722606125। सूचना समाप्त हुई।
2: श्रोते हुण सुनदे हां एक फिल्मी गीत। फिल्म है जब जब फूल खिले, आवाज लता मंगेशकर दी। गीत दे बोल लिखे ने आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गांव में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल में खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धीराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी। और पंचकूला नगर निगम के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आर के सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती और श्यामलात भूमि देने का अधिकार जिला उपायुक्त को देने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से लगभग 13 पर निर्णय लिया गया है।
1: 13 एजेंडा क्लियर हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी है और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी भी है। उसके साथ साथ कई आइटम ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायती लैंड श्यामलात भूमि देने की बात थी, वो पहले डायरेक्टर को पावर थी, अब उसको पावर फ्रॉम डीसी साहब को दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे हरियाणा का डायरेक्टर पंचायत पर वो जिस प्रकार स्पीड बढ़नी चाहिए थी काम की नहीं बन पा रही थी।
0: बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी दूर करने और गांवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा नए भर्ती 2600 पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि 18 माह से घटाकर 12 माह करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। सरकार का तर्क है कि लंबे प्रशिक्षण के कारण बड़ी संख्या में चयनित पटवारी गाँवों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि कम होने से राजस्व रिकॉर्ड, इंतकाल, जमाबंदी और भूमि संबंधी सेवाओं के लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई। करीब 550 एकड़ क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को बीज आदि की खरीद के लिए होने वाले खर्च से निपटने में राहत दी है और छोटे मोटे कृषि कर्जों के लिए कर्ज लेने से बचाया है। सबसे खास बात यह है कि ये राशि किसानों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी सिफारिश के सीधे पहुंच रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के 15,95,644 लाभार्थी किसानों के खातों में 319,13,00,000 रुपये की राशि पहुंची है। जींद के एक किसान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
2: ये जो मोदी साहब ने जो अपने स्कीम चलाई है किसानों के सम्मान के लिए, ये बहुत अच्छी स्कीम है। जिस टाइम ये किस्त आती है तकरीबन ये महीने ऐसे हैं जिनमें जमींदारी ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ तो सहारा लगता है आदमी को, खाद बीज कुछ तो ले आता है और ये किस्त बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है। अब 23वीं किस्त मेरी परसों शाम को टाइम टू टाइम मैसेज आया, मैंने शाम को सोने के वक्त 9 बजे चेक किया, उससे पहले आ चुकी थी किस्त। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, उनका दिल से धन्यवाद।
0: हरियाणा के किसानों को अब तक कुल 23 किस्तों में 7,881,60,00,000 रुपए मिले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी

0: लेके गांव धीराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर लगभग 55,49,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस बजट से केंद्र में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे धीराणा और आसपास के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। पंचकुला नगर निगम के 79,46,00,000 रुपए के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आरके सिंह को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज 3 दिन का रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया, जिसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने इस दौरान रिमांड अवधि में हुई पूछताछ और जांच की प्रगति से अदालत को अवगत करवाया। गौरतलब है कि आरके सिंह पर पंचकुला नगर निगम से जुड़े कथित गबन मामले में भूमिका निभाने का आरोप है। सीबीआई इस मामले में वित्तीय लेन देन, प्रशासनिक निर्णयों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की जांच कर रही है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नूह में खेल विभाग में तैनात उप अधीक्षक राम मेहर को 50,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी कार जिला खेल विभाग में ठेकेदार के माध्यम से मासिक किराए पर लगी थी, किंतु उसे इस वर्ष फरवरी से वाहन का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और खेल अधिकारी द्वारा उसके वाहन को 1 जून से विभागीय सेवा से भी हटा दिया गया। उसके बाद खेल विभाग के कुछ कर्मचारी उसकी गाड़ी को पुनः विभाग में लगाने के बदले 1,50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को न्यायालय में भेजकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वदेशी उद्योगों में पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकल से ग्लोबल तक की परिकल्पना को ध्यान में रखकर बुनी गई खादी आज देश की आर्थिक मजबूती और ग्रामीण समृद्धि का बड़ा आधार बन गई है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बलप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार ने इन 12 वर्षों में खादी व ग्रामोद्योग पर विशेष ध्यान दिया है।
1: 12 वर्षों में खादी पे एक खास फोकस किया गया है ताकि हम मेक इन इंडिया के स्लोगन को एक रियल सेंस में अपना सके, तो उसी के उपलक्ष्य में कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें से फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेकर मार्केटिंग असिस्टेंस तक का कवरेज किया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो हमारी स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके अंडर हमारी विलेज इंडस्ट्रीज है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
0: लोगों को जहां अनुदान पर ऋण उपलब्ध हुआ, वहीं डिजिटल मार्केटिंग द्वारा नया बाजार उपलब्ध हो रहा है। गनौर क्षेत्र के गांव खुबड़ू में आज सुबह सोनीपत अपराध शाखा और गनार पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच एजेंसी के एक हवलदार देवेंद्र के हाथ में भी गोली लगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोपाल पर हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों सहित करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक हत्या के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहा गोपाल इसी वर्ष मार्च में मिली पैरोल खत्म होने पर 30 मई को वापस जेल जाने की बजाय भूमिगत हो गया था। इसके बाद उसने सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 4 व 5 जुलाई को ली जाने वाली एचटेट परीक्षा 2025 हेतु पंजीकरण करवाने वाले अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने विवरणों में रह गई कोई भी त्रुटि ऑफलाइन माध्यम से दूर करवा सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ ने बताया कि यह सुविधा 25 जून तक केवल कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बोर्ड कार्यालय के कमरा नंबर 28 में मिलेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गांवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल में खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धीराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी। और पंचकुला नगर निगम के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आरके सिंह को न्यायिक

0: हिरासत में भेजा गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: एक कहानी एक हाउसवाइफ ते ओदी अंतरात्मा दी।
5: बिजली दा बिल, करियाना, स्कूल दी फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
5: हाँ, 5000 बच गए।
4: तो नवी साड़ी ले लो?
5: ना, पिछले महीने तो लई सी।
4: एक और?
5: नहीं, पहला बजट बनाओ, फिर छोटिया छोटिया बचता नू बैंक च बचा के रखो, ते पैसिया नू वध दे देखो।
4: वड्डी आई हुण जा भैणे।
6: और ये कहिंदा है
4: वित्तीय समझदारी खुशहाल नारी।
7: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। बीजेपी के कौमी प्रधान नितिन नवीन ने कहा, पश्चिम बंगाल की तरह पंजाब की माड़ी कानून व्यवस्था, गैंगस्टरों बाद नशे के नौजवानों का प्रवास सूबे के समुचे देश लई चिंता का विषय बने। पंजाब मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों के मापियां के हितों की राखी कर, उद्योगिक विकास को उत्साहित कर, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत कर, प्रशासनिक पहुंच में सुधार लियाने के उद्देश कई अहम फैसले लिए। पंजाब सरकार वालों 24 जून में मोहाली विखे NRI मिलने 2026 का आयोजन किया जाएगा। गुरदासपुर चप्परबारी दुआब नहर और तरन तारण राजपाच पाड़ पैण कारण सैकड़े एकड़ फसल पानी में डूबी, और मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज तो 26 जून तक गर्ज चमक नाल मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान नितिन नवीन ने कहा है कि जिमें पश्चिम बंगाल में बंगलादेशी घुसपैठियां करके उतों की बदलती जनसंख्या देश की चिंता का मसला बन गया, उस तरह पंजाब की माड़ी कानून व्यवस्था, गैंगस्टरवाद, नशा और नौजवानों का प्रवास सूबे के समुचे देश लई चिंता का विषय बन गए हैं। अज लुधियाना में पार्टी अहुदेदारों को संबोधन करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि बंगाल जिहे हालात पंजाब च भी सिरदर्द बन गए हैं, जिथे लोगों को काम के बदले अदायगी करनी पैंदी है। लुधियाना च ही पंजाब के सनअतकारां दीआं समस्यावां सुनते हुए श्री नवीन ने कहा कि पंजाब च उद्योगिक विकास ते निवेश लई साजगार माहौल बनेगा ते किसानी भी इस दे नाल नाल चलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योग के हर वर्ग दीआं समस्यावां वख-वख हुंदीआं ने, पर इन्हां दे हल वास्ते सरकार दी नीति, नीयत ते फैसलाकुन अगवाई भी अहम भूमिका हुंदी है। उद्योगपतियों ने जिथे पंजाब च अमन कानून के हालात को लेकर सवाल खड़े किए, उथे ही गैंगस्टरवाद और नाजुक अमन कानून के हालात पर भी सवाल चुके। पंजाब मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों के मापियां के हितों की राखी कर, उद्योगिक विकास को उत्साहित कर, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत कर, प्रशासनिक पहुंच में सुधार लियाने के उद्देश कई अहम फैसले लिए ने। इस दौरान मंत्रिमंडल ने प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों दी फीसां के वाधे को काबू करने लिए ऑर्डिनेंस में मंजूरी, उद्योगिक रियायतों संबंधी दिशा निर्देशों च सोध और स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म को लागू करने लिए सहमति दे दी है, और जिला हुशियारपुर दीन पैंदी दसूहा सब डिवीजन में वरीय डिप्टी कमिश्नर की असामी और सहयोगी अमले दी असामियों सिरचों भी प्रवानगी दी है। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ एन एडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोध ऑर्डिनेंस 2026 लियाउण नूं प्रवानगी दित्ती है। यह ऑर्डिनेंस इस संबंधी एक्ट 2016 विच सोध करके लियांदा गया। प्रवानगी वास्ते ऑर्डिनेंस हुण राजपाल कोल भेजा जाएगा। इस बारे जानकारी दिंदा सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दस्या,
8: अज असी ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट है कैबिनेट सामने पेश किया है, जिसनों माननीय मुख्यमंत्री साहब से सारी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिता है। हुण यह ऑर्डिनेंस जिहड़ा है वो गवर्नर साहब को जाऊगा, इस दे विच 5% का वाधा। ते मैं दोबारा कह रहा हूं, इत्थे जो आप फीस कह रहे हैं तो यह हर तरह की फी है, चाहे वह ट्यूशन फीस या कोई भी किसी ने नाम के उत्ते, सारा कुछ उन्हें कट्ठा मनिया जाऊगा। नंबर दो, इस एक्ट के विच लैके क्यूमुलेटिव फी। क्यूमुलेटिव फी का भाव यह है कि पिछले 36 महीनों च जिस दिन यह ऑर्डिनेंस जिस दिन यह एक्ट नोटिफाई हो जाता है उस तो 36 महीनों के पिछे अगर लगातार 15% का वाधा होया, जो 3 साल पहला फीस होगी, तो जिन्ना वो वाधा है वो माता पिता नूं, उन्हां बच्चियां दे माता पिता नूं मिलूगा।
7: श्री बैंस ने कहा कि जेकर कोई स्कूल महसूस करता है कि उसनों 5% तो बाद फीसां वधाउण की जरूरत है, तो उसनों सूबा सरकार वालों कायम की जाने वाली उच्च ताकती कमेटी को पहुंच करनी पवेगी। कमेटी स्कूल के मामले की जांच करेगी, इसका वित्तीय ऑडिट भी करवाएगी। एक होर अहम फैसले विच मंत्रिमंडल ने उद्योगिक विकास में उत्साहित करने सूबे दी उद्योगिक नीतियां रहत कैपिटल सबसिडी निवेश रियायतों की वंड वास्ते 13

0: बुलेटिन खत्म होंगे। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुम सुनोगे शाम 7:03। नमस्कार। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ।
1: ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ। ਲੇਖਕ ਹੈ ਵਰਿਸ਼ਠ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਾਚਕ ਚੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਭਾਰਤ ਆਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਬਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਉਭਰਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। भारत आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी समान महत्व दे रहा है। भारत की ऐसी एक मूल्यवान धरोहर है योग, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का एक समग्र विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में हुई थी, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाने के लिए योग विकसित की, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। उन्होंने योग के प्राचीन ज्ञान को व्यवस्थित करते हुए योग सूत्र की रचना की। इसके अतिरिक्त भगवद्गीता, उपनिषदों और हठ योग संबंधी ग्रंथों ने योग को दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। समय के साथ यह ज्ञान भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैलता गया। योग ने न केवल आध्यात्मिक साधना का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी अनेक समस्याओं के समाधान का भी माध्यम बना। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक संबोधन के माध्यम से पश्चिमी देशों में भारतीय दर्शन और योग की नींव रखी। इसके बाद परमहंस योगानंद, BKS अयंगर, महर्षि महेश योगी तथा टी कृष्णमाचार्य जैसे महान योगाचार्यों ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में योग का अभ्यास किया जाता है और लाखों लोग इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। योग को वैश्विक पहचान दिलाने में भारत की कूटनीतिक पहल अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए प्रस्ताव के बाद वर्ष 2014 में 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड संख्या में देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो योग के प्रति वैश्विक विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति और विश्व कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। यह सम्मान न केवल योग की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य और मानव कल्याण में भारत के योगदान की भी बड़ी मान्यता है। ये उपलब्धि भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान है, जिसने सदियों से मानवता को स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आयोजन में नई दिल्ली के राजपथ पर दुनिया की सबसे बड़ी योग कक्षा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया कि योग अब केवल साधना नहीं, बल्कि एक वैश्विक खेल गतिविधि के रूप में भी विकसित हो रहा है। योगासन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी में भी योग के प्रति रुचि बढ़ रही है। भारत सरकार ने योगासन को औपचारिक रूप से एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपनी खेल नीतियों में योगासन को शामिल करना प्रारंभ कर दिया। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में योग को 5 पारंपरिक खेलों में स्थान दिया गया है। यह मंच देशभर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया के माध्यम से उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग भी प्राप्त हो रहा है। योग का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते तनाव, अनियमित खानपान, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच योग एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आया है। वैज्ञानिक शोधों में यह भी सिद्ध हुआ है कि नियमित योगाभ्यास शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होता है। COVID-19 महामारी के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने योग और प्राणायाम को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का प्रयास किया। हरियाणा सरकार ने भी योग के प्रचार प्रसार और संस्थागत विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक

0: सेवा आयोग की परीक्षाओं में योग संबंधी ज्ञान को अनिवार्य किया गया है। राज्य में आयुष योग सहायक और योग प्रशिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। ये पहल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है। आगामी शैक्षणिक सत्र में कक्षा 3 से 9वीं तक योग शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विद्यालयों में योग शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए पीटीआई, डीपीईडी, पीजीटी तथा चयनित पीआरटी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित होगी। इसके साथ ही मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जहां स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी योग को प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है, जिससे योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। इससे योग के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन और शोध को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्पोर्ट्स विभाग का नाम बदलकर स्पोर्ट्स एवं योग विभाग करना भी एक सराहनीय पहल है। इससे योग को संस्थागत पहचान मिलने के साथ साथ युवाओं में इसके प्रति जागरूकता, रुचि और भी बढ़ेगी। यह कदम दर्शाता है कि योग अब केवल पारंपरिक अभ्यास नहीं बल्कि शिक्षा और खेल व्यवस्था का भी अभिन्न हिस्सा बन रहा है। आज जब पूरी दुनिया तनाव, जीवन शैली संबंधी बीमारियों और मानसिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता के लिए आशा और स्वास्थ्य का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। योग केवल भारत की पहचान नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण और संतुलित भविष्य की आधारशिला है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी हरियाणा राज्य दी हफ्तावारी समाचार समीक्षा। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੀਤ।

0: खड़ी तेरे बगुलो दे बार।
1: श्रोते हुण सुणदे आ नेहा कक्कड़ दा गाया गीत।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

झिलमिल झिलमिल तारा चमके डगमग डगमग नैया डोले रिम झिम बादल बरसे रामा हो गुन गुन गुन गुन भौरे झूमे झर झर झर झर झरने झूमे छम छम

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी, इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अनुरोध, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

धर्मवीर इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है गीत।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्रांति इस फिल्म का नगमा आपको सुनवाते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना संतोष आनंद की, संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जय माला कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, धुन बनाई है शंकर जय किशन ने और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,

चर्चा की गई। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थान तो खुदाई किए गए मनुखी कंकाला के अवशेषा उन्नत विज्ञानक अध्ययन लिए भारत ने मानव विज्ञान सर्वेखण सौंपया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग अगवाई हेठ पिछले 12 साल खेतीबाड़ी और किसान भलाई लिए कई योजनावां शुरू की गई ने। 23वीं किश्त के पैसे मिलने से किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की प्रशंसा की। खादी और ग्राम उद्योग कमिशन ने पिछले 12 साल देश की पेंडू अर्थव्यवस्था और स्वदेशी उद्योगों में बेमिसाल तब्दीली देखी। डिजिटल मार्केटिंग नाल विक्री लई नवे बाजार मिले ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के धिराना पिंड विच एक नवा उप सेहत केंद्र खोलने नूं मंजूरी दे दित्ती है। पंचकूला नगर निगम के कथित गबन मामले विच गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आर के सिंह नूं 3 दिनों की रिमांड खत्म होने तो बाद अज न्यायिक हिरासत विच भेज दिता गया। कतल की कोशिश बलात्कार और होर गंभीर अपराधा का दोषी गैंगस्टर गोपाल अज सवेरे गन्नेर खेतर दे पिंड खोबरू विच पुलिस नाल होए मुकाबले विच मारिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी रोपड़ अते स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी पंचकूला ने अकादमिक सहयोग लिए एक समझौता पत्र ते हस्ताक्षर किए ने। इस सन हुण तक दीआं मुख्य प्रादेशिक खबरां ते हुण पेश ने कुछ पंजाबी गीत। पंजाबी गीतां दे अज दे इस प्रोग्राम च असीं तुहानूं सुनवा रहे हां कुलदीप मानक दे गाए गीत।

हवा महल में आज नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं, वो आए घर में हमारे। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरत।

0: खत्म भी होगा आपका ये अखबार। सुबह से कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर, कभी इस कुर्सी पर, कभी उस पलंग पर, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको? ये सारा दिन यही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की, कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े हैं तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर है कि कबाड़ी की दुकान बना हुआ है, आप है कि कार्टून बने हुए हैं।
1: मगर तुम भी कोई

0: पलंग पर, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको? ये सारा दिन यही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की, कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े है तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर है कि कबाबी की दुकान बना हुआ है, आपे के कार्टून बने हुए हैं।
1: मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ, तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी।
0: और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। है? आप यहाँ से उठे, मुझे सफाई करने दें, मैं नहाऊं तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है।
1: और जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो। जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठकर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है या देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा।
0: धोखा?
1: हाँ, भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है? मैं पूछता हूँ घर आखिर होता किस लिए है? घर का सुख कहते किसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब जाओ और दो कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना।
0: अच्छा अच्छा। मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए, तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी, कोई लड़की, आखिर कब तक इसे?
1: भगवान क्यों चिंता करती हो, नौकरी आजकल मिलती नहीं और लड़की वो खुद मेरा मतलब ब्याह लाएगा।
0: क्या कह रही हो?
2: गुड मॉर्निंग डैडी।
1: गुड मॉर्निंग प्रिंसेस वेल्स।
2: डैडी आज बड़ा मजा आया शहर।
1: हाँ, मुझे भी।
2: मौसम बहुत अच्छा था।
1: हाँ, यहाँ भी।
2: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई डैडी।
1: हाँ, हाँ। किसके साथ?
2: किसके साथ? हाँ। जी वो मेरा मतलब है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो।
2: जी,
1: हाँ।
2: वो
1: हाँ, हाँ।
2: डैडी
1: कौन है वो?
2: डैडी बहुत अच्छी लड़की है, एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है, अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, और डैडी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार, आज की सोसाइटी की है इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती।
0: और
2: माँ धार्मिक विचारों की है।
0: अच्छा?
2: हाँ, अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी, मैंने बहराम डाकू नावेल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा?
0: क्या?
2: स्त्री सुबोधनी।
0: स्त्री सुबोधनी?
1: शाबाश बेटा शाबाश, मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। देगा
2: मगर डैडी हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
1: क्यों क्यों?
2: क्या बताऊं, हमारा घर तो बिल्कुल बेडअप है मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं, रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर?
0: ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है, मुझे तो रसोई से फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से।
2: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रख रखाव नाम को नहीं है।
1: अरे हाँ, रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ वो एक कप चाय।
0: हे भगवान।
2: डैडी मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी वो।
1: अरे देखना तो बेटा किसका फोन है।
2: देखता हूँ डैडी। हेलो, ओ शोभा, हेलो। हाँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या अभी 15 मिनट में? मगर शोभा सुनो तो। हाँ, बंद कर दिया। मम्मी डैडी
1: क्या हुआ?
2: शोभा शोभा डैडी।
0: अरे शोभा क्या हुआ शोभा को?
2: शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में।
0: तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देखूं।
2: वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही नजारा दिखाओगे उसे?
0: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अजी सुनते हो, अब उठिए भी।
2: सारा घर कबाड़खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
1: मगर वो चाल,
2: ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं, तेजी से उठिए ना प्लीज। भाग कर जाइए और शेव कीजिए।
1: अच्छा, जी हाँ, अच्छा,
2: शेव कीजिए और कपड़े पहनिए।
1: हाँ, हाँ।
2: क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
1: अरे तो
2: अगर मगर कुछ नहीं डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप है कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे बिल।
1: ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी दिन।
2: बस हो गया ना।

0: जल्दी चलिए, बनिए संवरिए और मेकअप कीजिए।
1: हाँ,
0: हाँ। और मम्मी, मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्या सुन रही हो? चलो फुर्ती से कमरा साफ करो। हाँ, रसोई संवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो।
2: अरे हाँ हाँ, मैं तो अभी जाती
0: हूँ। ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी, ये अपना शेविंग सेट तो लेते जाइए। और मम्मी तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ। लेकिन जरा जल्दी। हाँ, ये अखबार है। हाँ, ये बर्तन, ये फूलदान, अरे जूते भी यही है। वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के डिब्बे। हमारा घर है या किताबें? वाह, सब किताबें भी यही है। चुराबे हैं ये, और ये छतरी दिया सिलाई का भी यहाँ होना है। वाह वाह, डैडी वही काला सूट पहनेगा जो मुझे पिछले साल सिल रहा था। और मम्मी तुम?
2: हाँ बेटी।
0: अरे तुम तो तैयार भी हो गई। वाह वाह मम्मी, कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ, ये हुई ना बात।
2: अरे यार तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो। सुनो, अरे देखो तो कैसी लग रही हो। चलो चलो चलो चलो चलो,
0: मैं भी तैयार हो
2: लूं। चलो।
0: मेरे बुशर्ट का बुशर्ट, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। लीजिए, अब कंघी गायब है, मैं जाने कहाँ से। वो हो, हाँ ये भी है, मिल गई मिल गई। ओफो, ये घर है या ये हुई ना बात दादी, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं।
3: हीरो के बेटे, मुझे गर्मी लग रही है।
0: बस थोड़ी देर की तो बात है दादी।
3: हाँ,
0: बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी, मम्मी भी कैसे चंच रही है, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी यहाँ यहाँ बैठो। हाँ इधर इधर इधर, हाँ इस सोफे पर। हाँ डैडी, आप इनके साथ बाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ। हाँ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ, कितनी सुंदर जोड़ी है।
3: मगर बेटा,
0: बस डैडी, बस बस बस बस बस बस, हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए। हाँ
3: ऐसे।
0: और मम्मी, मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए।
2: ला मुझे तो।
0: हाँ ये लीजिए, और बस इसी पोज में, बिल्कुल
2: ठीक है।
0: हाँ हाँ, बस अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए।
2: बदला है ये तो।
0: शाबाश, वाह क्या शानदार तैयारी हुई है, घर भी नुमाइश की तरह बन संवर गया है। डैडी शायद वो आ गई। आया, अभी आया। हेलो शोभा, आओ आओ, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो?
2: नहीं रमेश, मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी।
0: नहीं नहीं नहीं शोभा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा।
2: हाँ। सॉरी रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही। ओके बाय।
0: मगर मगर सुनो तो शोभा, शोभा गई। डैडी वो
3: क्या
0: देकर चली गई,
3: और इसने अंदर झांका तक नहीं।
0: मगर मगर वो
3: डैडी, मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना, और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
0: मगर मगर डैडी उसे बहुत जरूरी कर
3: रहा। रमेश के मोह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
0: मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारा हमारा बिगड़ा क्या है आखिर, कुछ ना कुछ सवरा ही तो है।
3: मुझे सबक देते हो, मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया, और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा दांगा कट गया।
2: अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है, अब फिर से आराम कर लीजिए।
3: हाँ जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज। हाँ टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर। हाँ इस तरह।
0: माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया। अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
2: अच्छा बेटा।
3: ये रहा तुम्हारा सूट, नहीं पड़ा रहा है सोफे पर। वो कहाँ है मेरा मिराखबार, उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा। ऐश्रे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा। हाँ मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए। और रसोई से वो झूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ, अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की। और अब मैं सोफे पर टांगे पसार कर नाविल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की, क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे।
2: ये लीजिए चाय।

0: La abuela.
1: Llego y nada más. Managa, tombi pilcul, pelo ya sí lo creí yo.
2: Pelo ya sí lo creí.
1: अरे जरा देखना तो बेटा कौन है दरवाजे पर।
3: अच्छा दादी।
4: शोभा
2: है, इतना घबरा क्यों गए?
4: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम।
2: हाँ मैं, क्यों कोई एतराज है?
4: एतराज नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कोई एतराज नहीं है, मगर मगर तुम तो
2: भाई। मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो, अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं?
4: सॉरी।
2: नमस्ते माता जी। नमस्ते पिताजी।
4: नमस्ते नमस्ते
2: नमस्ते। अरे ये बात क्या है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं?
4: कुछ नहीं शोभा, कोई बात नहीं। शोभा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम फिर कभी।
2: जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
5: हाँ हाँ बेटी यहाँ बैठो सोफे पर।
2: धन्यवाद। हाँ कितना आराम है यहाँ, कितना सुख
5: जी।
2: हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
4: शोभा तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
2: और रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर ना हो, कोई अजायब घर हो। नौकर है कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना। कहीं बैठने लगो तो यहाँ ना बैठना बेटा, अभी ठीक किया है। कहीं लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी, अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं। अंदर जाने लगो तो अरे इधर नहीं आना शोभा रानी, अभी सफाई की है। कुछ उठाने लगो मैली हो जाएगी। उठते बैठते सोते जागते इंचो सेंटीमीटर का हिसाब है हमारे घर।
4: लेकिन शोभा घर का रख रखाव सही पहनाव भी तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
2: इस पोजीशन में नहीं बैठो साड़ी खराब हो जाएगी, टेढ़े ना लेटो कपड़ों की टेरेस खराब हो जाएगी। ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे। घर ना हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। अगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी।
1: ये भी खूब रही, बहुत खूब। देखो तो।

वो आए घर में हमारे, ये नाटिका अभी आपने सुनी। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी, देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है धड़कन।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह है राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुने अगला गीत अभिजीत सपना मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं जुबीन गर्ग की आवाज में। नगमा निगार है सईद कादरी, म्यूजिक है प्रीतम चक्रवर्ती का और फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के और नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल

0: रक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर महार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की

0: मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है स्वामी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है

आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है तकदीर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म दो बदन से। गीत है शकील बदायूनी का, संगीत है रवि का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं रवि और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये गाना
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

पुराने साल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता अमरीश पुरी पर।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

0: इस बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।
1: उई उई उई उई उई उई उई उई।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं। सन 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: एक बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद निहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं। जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं। ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: हीरोज रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो। मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहां आपका ये बजा ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही। बड़े शौक से जाइए छोड़ कर मगर सहने।

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

0: की हो जाएगी हमारे जी और टीडे की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोतियों, ब्रेक तो बाद लेके आए हैं बब्बू मान दा गाया गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोते हुण सुणदे आं बलकार सिद्धू दा गाया गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित

तो रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी

0: सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। इस वेले रात दे 11:05 हो चुके ने। हुण साडे केंद्र तों अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानू इजाजत दिओ। जय हिंद।